अस्सलाम वालेकुम सामने मुसदाय तुर्किया से मुखातिब है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 23 मई प्रो सप्ताह है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने आप अनशियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्स के अलावा 3 ईस्ट 4 वेस्ट पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें और सिलसिला प्रोग्राम अनातोले के शाहकार आसमानी कहानियां और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारी नशरियात हस्बे मामूल 1 घंटे तक जारी रहेंगी। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपन।

आई सामने पहले आज की खास खास खबरों का खुलासा समात मई। सिक्योरिटी सुरक्षा से मालूमात के मुताबिक तुर्की कौमी खुफिया सर्विस ने सरहद पार एक ऑपरेशन करते हुए दाश के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल की है। तुर्की ने तुर्क फरारों को हलाक करने वाले दहशतगर्द को रहा करने पर यूनान की मुजम्मत की। पाकिस्तान से आजम शहबाज शरीफ हफ्ते को चीन के 4 रोजा दौरे के लिए रवाना हुए। पाक फौज के सरबराह तेहरान का दौरा कर रहे हैं। अब खबरें तफसील के साथ। सिक्योरिटी सुरक्षा से हासिल करदा मालूम के मुताबिक तुर्क कौमिया खुफिया सर्विस ने सरहद पार एक ऑपरेशन करते हुए दाश के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल की है। कौमी खुफिया सर्विस ने शाम में शामी इंटेलिजेंस के साथ मुश्तरक ऑपरेशन के नतीजे में रेड बुलेटिन के तहत मतलूब 10 दाश रुकनों को गिरफ्तार करके तुर्किया मुंतकिल किया है। कौमी खुफिया सर्विस और महकमा पुलिस के दहशतगर्दी से निमटने वाले शुबे के मुश्तरक काम के बाद इनमें से 9 को हिरासत के बाद जेल भेज दिया गया, जबकि 1 के रिमांड की मुद्दत में तोसी की गई है। कौमी खुफिया सर्विस की मालूमात की बुनियाद पर मालूम हुआ है कि तुर्क में 7 अफराद तुर्किया से शाम गया वो दाश में शामिल होकर तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि अफराद दाश के अंदर सरगर्म रहे। माजिम तुर्किया में मोत दहशतगर्दाना वाकयात में

रहा। गिरफ्तार शुदा 10 दशकों में से एक कतलक 2015 में 109 अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले अंकारा रेलवे स्टेशन हमले के रबता कारों में से था। कौमी खुफिया सर्विस ने 10 दाश अरकान की शाम मौजूदगी का तयन किया, जिसके बाद उसने शामी खुफिया सर्विस से रबता किया। बाहमी ताउन के तहत काम शुरू किया गया। शुहात की बिना पर इन अफराद के मुकाम का तयन हो गया। दहशतगर्दों की नकल हरकत पर कदम ब कदम निगाह रखी गई। मुनजम ऑपरेशन के जरिए इन 10 दाश अरकान को शाम में गिरफ्तार करके तुर्किया लाया गया है। इन करिंदों ने पुलिस को दर्जा जैल बयान रिकॉर्ड कराए हैं। दाश से मिलने में कार्रवाई की हदायत। दाश के तहत हासिलकर्दा अस्करी और दीनी तरबियत, दाश के नाम पर अंजाम दी गई प्रोपेगेंडा सरगर्मियां। तुर्किया ने तुर्क सफारकारों को हलाक करने वाले दहशतगर्द को हरा करने पर यूनान की मुजम्मत की है। तुर्किया ने 17 नवंबर को दहशतगर्द तंजीम के सरगना अलेक्जेंडर रोसयोथो पोलोस की यूनान की जेल से रहाई की शदीद मुजम्मत करते हुए इस फैसले को शहीद तुर्क सफारकारों की बेइज्जती करार दिया। योथो पोलोस को 1991 में एथेंस प्रेस अताची चेतिन गोर्गू के कत्ल, उसी साल अंडर सेक्रेटरी तेनिस पोलुपाशी के कत्ल के इकदाम, 1994 में अंडर सेक्रेटरी हारूस पायोल के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया था। वजारत खारजा की जानब से एक बयान यूनान में दहशतगर्दाना कार्रवाई के जुर्म में इसे 17 उम्र कैद दीगर सजाएं सुनाई गई थी। अंकरा ने इस रहाई को एक नाकाबिल कबूल नरमी का मुजाहरा करार दिया। यूनान पर जोर दिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। पाकिस्तान के आज़म शहबाज शरीफ हफ्ते को चीन के चार रोज़ा दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। बताया गया है कि इस दौरे का मकसद अमली में हम आहंगी को मजबूत करना है। वज़ीर आज़म हाउस के बयान के मुताबिक इस्लामाबाद अमरीका ईरान जंग खत्म करने के लिए बिलवास्ता बातचीत की खिदमत जारी रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ के हमराह नायब सियासम से खारजा इसहाक डार और काबीना के दीगर अराकीन हुकाम भी शामिल हैं। शरीफ अपना दौरा ज़िजियांग सूबे के शहर हांगजू से शुरू करेंगे, जहां वो IT व टेलीकॉम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और ज़राअत के मौजू पर पाकिस्तान चीन B2B सरमाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। बाद में वो बीजिंग रवाना होंगे, जहां वो चीनी क्यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग शामिल हैं। शी की तरफ से शहबाज शरीफ की मेज़बानी करना इस माह बीजिंग की जानब से आला सतह गैर रहनुमाओं की मेज़बानी के पस मंजर में अहमियत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में अमरीकी रूसी सदर ने शी से मुलाकातें की, जबकि इस्लामाबाद वाशिंगटन तेहरान के दरमियान साजिशी का अमल जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने 8 अप्रैल को जंगबंदी में साजिशी का किरदार अदा किया था, जिसने इस जंग को रोक दिया था। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा, इस दौरे से सियासी इत्तेमाद मजीद गहरा होने के मतलब हम आहंगी मजबूत करने, अमली तवाजन के दायरे के वसी होने और पाकिस्तान चीन के तवील मुद्दती दोस्ती को मुस्तहकम करने की तवक्को है। पाक फौज के सरबराह तेहरान का दौरा कर रहे हैं। मशरक वस्ता की जंग के बारे में सफारकारी तेजी पकड़ती जा रही है, तो ईरान एक नए अमरीकी मनसूबे का जायजा ले रहा है। यह खबरदार कर रहा है कि किसी वादे के रास्ते में तहाल गहरे तनाजात मौजूद हैं। ईरान वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई जुम्मे को खबरदार किया कि फील्ड मार्शल आसिम अली का दौरा इस बात का इशारा नहीं कि हमने कोई संगमीन या फैसला कुन सूरत हाल हासिल कर ली है। ईरान के अखबार एजेंसी SNA के मुताबिक ने मजीद कहा, ईरान अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और वसी हैं। दरअसल अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, अमरीका ईरान पर नए फौजी हमलों का जायजा ले रहा है। CBS और 21 एक्सियस की रिपोर्ट इससे चंद घंटे कबल हैं, जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हफ्ते अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि वह हुकूमती हालात अपनी मोहब्बत पर रास्ते हाय मुत्तहिद अमरीका की वजह से ये कदम उठा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मेरे लिए जरूरी है इस अहम मौके पर Washington DC में व्हाइट हाउस में रहूँ। अमरीकी सेक्रेटरी जनरल मार्को रूबियो ने पहले जंग खत्म करने की जान पेशरफ की उम्मीद जाहिर की थी। 8 अप्रैल की जंगबंदी हमलों को रोक दिया, लेकिन मुज़ाकरात जिनमें इस्लामाबाद में रूबरू बातचीत भी शामिल, अभी तक कोई पायदार मुआहदा सामना नहीं लाया जा सके। पाक फौज का कहना है कि फील्ड मार्शल जारी साजिशी कोशिशों के हिस्से के तौर पर तेहरान गए हैं। उन्हें ईरान के वज़ीर-ए-दाखला इस्कंदर मोमनी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-दाखला मुस्तफ़ा नकवी ने खुश आमदीद कहा। नकवी ने हफ्ते में दूसरी मरतबा बुध को ईरान का दौरा किया था। बकाई ने कहा कि जुम्मे को एक कतरी वफ ने भी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा, हाल ही में बहुत से मुल्क खित्ते और गैर खित्ते जंग खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम पाकिस्तान बाज़ाब्ता सालिस का किरदार अदा कर रहा है। आसिम मुनी ने इस दौर में मरकज अदार किया। दोनों फुलफू से मुलाकात की, एक अमरीकी नायब सदर जे डिवेंस के साथ अवामी तौर पर गर्मजोशी भी दिखाई। रूस के इंसानी हकूक के कमिश्नर याना लांत्रो तोफा ने टेलीग्राम पर लिखा है कि रूस के

इंतजाम यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में स्टारोब्लस्क पैदागोगल यूनिवर्सिटी कॉलेज में हॉस्टल भी शामिल था, पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद 4 अफवाह हलाक और 35 जख्मी हो गए। हम बेलकॉम तंजीमों से तोको करते हैं, बच्चों के तालीमी इदारे और रहायश के इस्तेमाल होने वाली सिविल तनसीब पर दानस्ता तौर पर किए गए हमले पर रद्दमल का मुजाहरा करें। रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर वज़ारत हंगामी अमूर के बयान के मुताबिक मलबे तले से 3 अफराद निकाले जा चुके हैं। रूसी तनसीब शुदा लुहांस के सरबराह लेविन पास्चरक ने मैक्स पर कहा, अभी भी कुछ बच्चे मलबे तले हैं, अमदादी काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमले के वक्त इमारतों के अंदर 86 बच्चे मौजूद थे। पास्चरक ने कहा, स्टारोब्लास्क में इंतजामी इमारतों, दुकानों और निजी मकान को भी नुकसान पहुंचा। एकलाता दावे में रूसी वजारत दफा ने टेलीग्राम पर कहा, इसकी फोर्सेज ने मुल्क भर में रात भर में 217 यूक्रेन ड्रोन मार गिराए। तरसना यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पर दावा किया, रूस ने मुख्तलिफ अकसाम के 124 ड्रोन छोड़े, जिनमें से 115 को रोका गया। इलाके गवर्नर अलेक्जेंडर प्रोकोदिन ने कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेन के हर्सून इलाके में एक शख्स हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइली जुमरी लुबनान में 10 अफराद को हलाक कर दिया। लुबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया, इसराइली फोर्स ने जंगबंदी के मुसलसल खिलाफ वर्जी की, जिसके इंतजाम जुबी लुबनान में 10 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 6 इमदादी कारकुनान, एक बच्ची भी शामिल है। वजारत के दादोशुमार के मुताबिक जुम्मे को ताय शहर के करीब देरकान अन नहर के इलाके में एक हमले में 6 अफराद हलाक हुए। मरने वाले में रिसाला स्काउट्स एसोसिएशन के 2 फर्स्ट एड वर्कर्स एक शामिल लड़की भी शामिल है। हालांकि कस्बे पर एक और फजे हमले में मजीद 4 कुन मारे गए। ऑनलाइन शेयर की जाने वीडियो में दिखाया गया है कि पहले हमले में एक बाप बच्चे की हलाकत हुई, इसके बाद दूसरा हमला चाहे वो कुआ पर जमा होने वाली इमदादी टीमों को निशाना बनाते हुए किया गया। ये तरीका फौजी जबान में डबल टेप हमले के नाम से जाना जाता है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने वर्ल्ड बैंक की एक ताहली दस्तावेज के मुताबिक इतला दी है कि ईरान की जंग से शुरू होने के बाद 27 मुल्क ने जो वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रोग्राम से तेज से फंडिंग तक रसाई के लिए बहरानी मैकेनिज्म की राह अपनाई है। एजेंसी ने वर्ल्ड बैंक की इन दस्तावेज के हवाले से ममालक के मुमकिन तौर पर मतलूबा मजमू फंड्स की रकूम को जाहिर नहीं किया। दस्तावेज से पता चलता है कि 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले शुरू होने के बाद से 3 मुल्क ने फाइनेंशियल मॉडल्स की मंजूरी दे दी थी, जबकि दीगर मुल्क इस अमल को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जंग आलमी तवानाई मंडियों में होने वाले हलाल आलमी सप्लाई चेन को मुतासर कर चुका है, से तरक्की पजी मुल्क तक खाद की तरसील रुक गई है। कीनिया और इराक के एहलकारों ने तस्दीक की है कि अफ्रीकी मुल्क में ईंधन की कीमतों में तेजी और इराक में तेल की आमदनी में बड़े पैमाने पर कमी की बिना पर वो वर्ल्ड बैंक से जंग के असरा से निमटने के लिए फौरी माली मदद तलब कर रहे हैं। 27 मुल्क उन 101 ममालक में शामिल हैं जिनके पास किसी न किसी शक्ल में कब्ल अज बहरान तयशुदा माली माहदों के तहत रसाई मौजूद थी, जिनमें से 54 ने फौरी रद्दमल ऑप्शन इख्तियार किया था, जो मालिकों के गैर जारीशुदा फंड्स के 10% तक इस्तेमाल की इजाजत देता है। न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से किसी राहत की तलाश में नहीं और जोर दिया है कि तेहरान सिर्फ अपने हकूक की बहाली पाबंदियां खत्म करने का तलबकार है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने जुम्मे को कहा, मुत्तहिदा अमरीका से किसी रायत के ख्वाह नहीं, हम सिर्फ अपने हकूक के हक तलबकार हैं। तर्जमान का ईरान मुतालबा कर रहा है कि अमरीका की ईरानी अवाम के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों का खात्मा किया जाए। उन्होंने कहा, पाबंदियां खत्म होनी चाहिए, ईरान के मंजूबंद असासे जारी किए जाएं, मुल्क के लिए दस्तयाब किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा, गुज़िश्ता 5 दहाइयों से हम उन इकदाम के ताबे रहे हैं जिन्हें वो खुद क्रिप्टिंग सैंक्शंस कहते हैं। बकाई ने कहा, पाबंदियां मुख्तलिफ बहानों के तहत आयद की गई थी, बुनियादी तौर पर इस दावे की बुनियाद पर कि वॉशिंगटन ईरान को जोहरी खतरा तस्वर करता है। ईरान की तरफ से खत्ते या दुनिया में किसी भी फ्रीक के खिलाफ कोई जोहरी खतरा मौजूद नहीं रहा। बकाई ने आपदा हुरमत से मुतलक हालात पर भी बात की, अमरीकी पहली महासरे को बैन अवी कानून के बिल को खिलाफ करार देकर तनकीद की। उन्होंने वाशिंगटन पर जोर दिया उस महासरे को खत्म करने के इकदाम करें। स्पेस एक्स ने अपनी सबसे बड़ी स्टारशिप की आजमाइशी परवाज की है। स्पेस एक्स ने अपने जदीद तीन ताकतवर तीन मॉडल स्टारशिप की एक नई आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली है। नासा मुस्तकबिल के कमरी मिशनों में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, जब सीईओ एलन मस्क की तरफ से कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल करने के मनसूबा

0: ऐलान किया गया तो इसके दो दिनों बाद जो भी टेक्सास में स्टार बेस से इसे लॉन्च किया गया। रॉकेट में स्टारलिंक सैटेलाइट्स के 20 मार्क ऑप्स थे जिन्हें प्रवास के दौरान मैदान में छोड़ने का मंसूबा है। इस प्रवास ने स्टारशिप के ताजा तीन वर्जन की 12वीं आसमाइशी प्रवास को सर अंजाम दिया है। इसके साथ इस तरह तुर्की से खबरें खत्म हुई।
1: अनातोलिया के शाहकार आसमानी कहानियां।